तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईआ सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे।

गणत गणावने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ पिरड़ावै नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल।

संत सभा सुखी उपजै, गुरमुख नाम आधार, खिन मैं उपजै खिन खपै, खिन आवै खिन जाए, शब्द पछाणै रव रहै, ना तिसकाल संताए, साहिबा तुल ना तोलीऐ, कथन ना पाया जाए। वापारी वन जा रिया आए वजो लिखाए, कारक मावै सच की लाहा मिलै रजाए, पूंजी साची गुर मिलै ना तिस दिल ना तमाए, गुरमुख तोल तोलाए सी साहित राजी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल, आप तोलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कथना कहन ना छुट्टिया ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाईऐ बिनहर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार। श्री राग महला पहला। सतगुर पूरा जे मिलै पाईऐ रतन विचार, मन दीजै गुर अपने पाईऐ सर प्यार, मुक्त पदार्थ पाईऐ अवगुण मेटन हार, पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्मे नारद बेद ब्यास कोय रहाओ, ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावै सोए, सफल्यो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए, लाल

गुरमुखे अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाओ। हरे मन ऐसी हर सो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुखणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर। रे मन ऐसी हर सो प्रीत कर जैसी चातरक में है सार पर थल हरियावले।

0: जे लख कोटी कर्म कमाए अर्ध शरीर कटाई है सिर करवत धराए तन है मन चल गाली है भी मन ते रोग ना जाए हर नामै तुल ना पुजे सब डिठी ठोक बजाए कंचन के कोट दत्त करी बहु हैवर गैवर दान भूम दान गऊआ कणी पी अंतर गर्भ गुमान राम नाम मन बेदिया गुरदिया सच दान मन अठ बुद्धि केतिया केते बेद विचार केते बंधन जी के गुरमुख मुख द्वार सचो ओर है सब को उपर सच आचार सब को ऊंचा आखिया नीच ना दिसै कोए एक न पांडे साजिया एक चानण ते होलोए कर्म मिलै सच पाईऐ तुर बख्शना मेटै कोए साध मिलै साधु जनै संतोख वसै गुर पाए अकथ कथा विचारी है जे सतगुर माहे समाए पी अमृत संतोखिया दरगह पैंदा जाए घट घट वाजै किंगुरी आन दिन शब्द सुभाए विरले कौ सोझी पई गुरमुख मन समझाए नानक नाम ना विसरै छूटै शब्द कमाए।
1: सर्व सांझी गुरबाणी प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन टॉप लिंक लोन एंड लीजिंग। तुहाडा ट्रक ट्रेलर दा लोन कितों नहीं हो रहा जां तुसी यूज्ड ट्रक खरीदने हन ते सानू कॉल करो 204-480-9600 जां ऑनलाइन विजिट करो toplinkfinancial.com।

0: सिटी ऑफ विनीपेग दे वाटर मीटर रीडर्स हुन तो लेके अगस्त तक घर घर जानगे मीटर रीडिंग्स लेन ले सवेरे 9 बजे तो शाम 8:30 बजे तक जे असी थोनो मिस कर गए तासी थोड़ी ले एक मीटर रीडिंग रिमाइंडर कार्ड छड के जावांगे और जानकारी ले विजिट करो winnipeg.ca/meter-reading
1: 92.7 FM CKJS welcomes the X back to Exhibition Park.
2: Take part in one of Winnipeg's favorite summer traditions, June 12 to 21st.
1: With exciting midway rides, live entertainment, cultural nights, delicious food,
2: and fun for the whole family.
1: You can experience the sights,
2: sounds,
1: tastes, and excitement on us. Visit CKJS.com now to get your name and to win a pair of tickets for you and a friend.
2: The X returns June 12 to 21st
1: at Exhibition Park.
2: Be there
1: with 92.7 FM CKJS.
3: मैनिटोबा विच खसरे दे मामले वध रहे हन तुसी इस दे फला नू रोकन विच मदद कर सकदे हो किसे भरोसेयोग केयर प्रोवाइडर नाल गल करो जां होर जानकारी लई manitoba.ca/measles ते जाओ मैनिटोबा सरकार वल्लों इक सुनेहा
4: Take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app. Download the app for free in your App Store today. Search iHeartRadio.